0: जो जो लोपाथ नेपाल सम्बचिन्छ सो पी खुद तसलाथो तृतीया थो रेडियो नेपाल ख नेनादिसा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। प्रतिनिधि सभा मिग विनियोजन विधेयक 2083 कथ मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षक दिया सल जुगुदु सल संसदेसम्म बजेट वितरण मुखी कथम वोगु राष्ट्रिय गरोपे आयोजना यता थ्याबी मफुगु सडक त व्याकेगु गुणस्तर कामयागु व सडक भिङ्केगु ज्या थ्याबी मफुगु थया दिगुदु सांसद पिसा देया त आर्थिक कथ चुए लोने त विज्ञान प्रविधिसँग लगानी याय माग जुसान विज्ञान प्रविधि व नव प्रवर्तन नीति पेङ्गु अर्ब ढेवाया ल्याखे जक्क ढेवा विनियोजन जुगु व युगको बजेट साधारण खर्च हे क घागुली नव प्रवर्तन लगाए ज्या या त हाठ्या खने दुगु कना दिल सांसद पिसा न्याय पहुँस तापापी विपन्न मनु ते त निशुल्क कानुनी सहायता लल ह्या त मुक्क झिन्छगु लाख गुई नेदो जक्क ढेवा फ्यागु व न्याय व कानुनी पहुँचे मधुपी मनुते गुनिते न्यायसँग पहुँच थ्याङ्के त टेबा मगाको दासे जनता यता न्याय बिगु या ना बजेट वे मफुगु कना दिल सांसद पिसा बजेट निर्माण या इले सरकार प्रणाली कथ हे बजेट वेगु जुसान उकी अथे मजुगु व जिल्लागत कथम विभेद जुइगु या ना सडक नापाया पूर्वाधार विकास या बजेट वोगु कना दिल सांसद पिसा शिक्षा अस्वास्थ्यसँग सोङ्गु प्रतिशत मत के न्यागु प्रतिशत कर काइगु ख आम मनुतेता हाठ्या फे मालिगु जुगु न धया दिगु दुसा सांसद पिसा फुक्क मनुतेके स्वच्छ तोने गु ल ठेङ्केगु मताया अफुगु आपूर्ति याय मागु निर्माणाधीन जल विद्युत आयोजना ज्या इलेहे पुङके मागु विशेष बजेट प्राथमिकता क्यात ब बिगु खसा प्रतिनिधि सभा बैठक थौ सुते छिन्छ त इले चोनिगु गोसादु थौ या बैठके मन्त्रालयगत छ दथि लुहङ्गु नेसया स्वापुदुपी मन्त्री पिस लिस बिगु ज्याझोदु चिकित्सक शिक्षा आयोग छात्रवृत्ति अनुदान नापाया कार्यविधि 2083 स्वीकृति आगु याना को छिगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साय अध्यक्षता मिक सङ्घु आयोग आयोग बैठक थोको छिनायागु ख प्रधानमन्त्री सहायता प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दहालिया कथा शिक्षा तथा खेलकुद अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति कागु नि पेगौ मभिव आयोग कार्यविधि पासेना नापा निशिया कानुनी अस्पष्टता व हाठ्या त दीर्घकालीन कथन हङ्कगु ख हाठ्या नहङ्केको नीति असार एक गते अर्थ मन्त्रालय शिक्षा व खेलकुद मन्त्रालयसँग सकारात्मक राय नापाया सहमति वोगु खसा कार्यविधि सार्वजनिक शिक्षण संस्था यता ढेवामाका छात्रवृत्ति स्नाकोत्तर तह डिएम एमसीएच नापासँग ढेवामाका छात्रवृत्ति लल हागु लल फुसा अनुदान इनेगु ल चाकगुदु ल चालिगु जुगुदु कार्यविधि आयोग या थासा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन याकेगु शिक्षण संस्था या त पुकन तहसँग स्नातकोत्तर तह डिएम एमसिएच नापा ढेवा मायाका छात्रवृत्ति लल ह्यागुली अनुदान बितासङ्गु ख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नापाङको राष्ट्रिय महाधिवेशन या नापा दे व्यापी कथा संगठन या त तपाईँ कि गुजुगुदु वडापालिका जिल्ला व प्रदेश तहसँग लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पाखे नुगु नेतृत्व लियोसे पार्टी संगठन या त पुनः संरचना संस्थागत कथा सेला कि गु ज्याखे निजग गुदु थोय असार सात गते निशे नौ गते तक चितवने गोसा गुइगु नापाङको राष्ट्रिय महाधिवेशन या पार्टी युकुते तह अधिवेशन पुङकुसे खुगु प्रदेश नुगु नेतृत्व लिए धुङ्क गु पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्ला कोटिन जानकारी ब्यादिगु खसा महाधिवेशन ह्याङ्गु प्रदेश अधिवेशन कथा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम व कर्णाली प्रदेश नुगु नेतृत्व लिए धुङ्कगुदु कोशी प्रदेश सभापति राम कोशी प्रदेश सभापतिसँग चन्द्र राई बागमती प्रदेश सभापतिसँग उत्सव अर्याल गण्डकी प्रदेश सभापतिसँग नमिन त्रिपाठी लुम्बिनी प्रदेश सभापतिसँग शालिकराम घिमिरे निर्वाचित जुया दिगु दुसा सुदूरपश्चिम प्रदेश नेतृत्व प्रकाश विष्ट हान निर्वाचित जुया दिगु ख मधेस प्रदेश या धनुषा सप्तरी बारा सरलाई अधिवेशन जुता लिय दयाहे चोङ्गु धागु दुसा रासो पाँ प्रदेश व जिल्ला अधिवेशन त्यता आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास कथा न्याकुसेन ढेन्डेपला पाखे नेतृत्व लियगु धागु दु थोयदती चितोनी जुगु नापाङ राष्ट्रिय महाधिवेशन या तयारी सिधेता सङ्गु धागु दुसा महाधिवेशने दे व विदेश पाखे अथे निदो न्यास प्रतिनिधि ते सम्पोति काइगु गोसादु। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल चिनिया लगानीकर्ता तेता नेपाली लगानी याना पार हिमाली समृद्धि मेगु अध्याय मङ्का कथा देशता इनाफिया नदी गुदु चिनिया औपचारिक भ्रमण सिधे धुङकानी वेक मिग बेजिङे दुगु नेपाली दूतावास गोसागुगु लगानी सम्मेलन यता कखाना दिसे नेपाली आर्थिक वाता व जनसाङ्ख्यिकीय सामर्थ्य यता उला दिसे अझ उपसक्षम व्यवसाय व्यवसाय मैत्री लकस सुनिश्चित यता नेपाल सरकार प्रतिबद्ध जुयागु धया दिगु दूतावास थागु दु नेपालले चिनिया लगानी प्रवर्धन यागु आज राजूतावास गोसागुगु सम्मेलन या लसत्या वेकला चिनिया व्यवसाय उद्यमी ओ लगानीकर्ता नापा नाप्लाना दिगु खसा थु लसत्या नेपालले दुपी लगानी या वाता विशेषण नेपाल लगानी बोर्ड या प्रतिनिधि नापा न्यवया दिगु थिति ज्याजु दुगु खासा मन्त्री खरेल मिगे बेजिङ ने दुगु चिनिया चिनिया जनराजनैतिक परामर्श सम्मेलन राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष वाङ हुनिङ नापाना नापाना दिगु ख मन्त्री खनाल भ्रमण पुङका थौ नेपाली हाँ झाइगु गोसादु। सरकार ओभर द टप ओटिटी प्लेटफर्म या त औपचारिक कथा दर्ता व नियमन या दायरा हगुदु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2025 संशोधन यासेन डिजिटल प्रसारण प्रणाली कथा सञ्चालन वयासँगको ओटिटी सेवा प्रदायक त्यता कानुनी कथा नियमित यागो व्यवस्था यागु ख मिग राजपत्रे पिथङको संशोधन नियमावली कथा आ नेपाल दुने सेवा बिगु वा मुख प्रसारण यागो विदेशी व स्वदेशी ओटिटी प्लेटफर्म त्यस अनुमति कायगु जुगुदु थो नापा दे दनिसे औपचारिक कथा ध्याना चङ्गु डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा व ओटिटी प्लेटफर्म त नापाङको खुसी स्पष्ट कानुनी संरचना दुने वैगु जुगुदु संशोधित व्यवस्था कथा अनुसूचित तिन क सन डाउनलिङ याइगु ओटिटी विदेशी ज्याझो ओटिटी प्लेटफर्म नापा या धल अनिवार्य यागुदु थो नापा आ विदेशी ओटिटी सेवा प्रदायक व डिजिटल ज्याझो इनिगु संस्था नेपाल दुने प्रसारण याइगु अनुमति नापा कायमालीगु जुगुदु। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड देया थिति निसो व निगु सेवा प्रदायक अस्पताल त्यता बिमा भुक्तानी नीति मेगु गुई छगु करोड झिन्च्यागु लाख गुई पेद भुक्तानी याइगु प्रक्रिया निजाकगुदु। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय स्वास्थ्य बिमा व विपन्न नागरिक त्यता वास यागु ज्याचो कथा ल्यादुगु भाला भुक्तानी यता थ्या बिसेन ठेबानीका सा यागु नीति अफुका बिगु ख मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी कथन थ्या ह्याङ्वाङ्गु जेठिया निकगु वाले स्वास्थ्य बिमा दाबी बाप छगु अर्ब सोङ्गु करोड नी पेङ्गु लाख नेन हेन्दो भुक्तानी यागु ख नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गसँग सवारी जोल साउन निसे सञ्चालने हैगु याना मागु ज्या याना चुङ्गुदु नेपाल बहुप्रतीक्षित सुरुङ मार्ग गोसा गोगु व ह्याके त सने व नौबिसे नागढुङ्गा सडक खण्डे जुइगु सवारी वैगु वनिगु अपुइगु भलसा कागुदु नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग देकगु आयोजना या आयोजक निर्देशक सौजन्य नेपाल वैगु साउन दुने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग न्याकिगु याना दुनिया ज्या न्याकागु वेकल कनादिगुदु। मेलम्ची खानेपानी आयोजना या ल ये सोनिग सम्प्रभावकारी कथा इनेगु ज्या सुन्दरी जल क्षेत्रसँग झिन्च्यास मिलिलिटर ब्यासा पाइप ल्यागु ज्या ह्याकगुदु आयोजना छेलाबुला नीति निर्देशनालय आयोजना छेलाबुला नीति निर्देशनालय पिआइडी या कथा थो नेपालले पिआइडी खानेपानी वितरण या नीति छेलिगु आतक या हे फुक्क शिवे तधङ्गु साइज या ब्यास या कथा दुगु पाइप ख खोप किपु मध्यपुर ठिमी कपन जोरपाटी व पेप्सिकोला लागा तोनिगु ल इनेगु ज्या तब्याकेगु नीति ज्या न्याजाकागु निर्देशनालय या प्रमुख नापा इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ कनादिगुदु वेखे कथा मेलेम्चिया लयता ये सोनिगदुने थु थि लागा लिचो लाइगु कथा निर्देशनालय बिताओ चाने हे चानेसिया इलेहे निगु सिफ्टे ज्या जुया चोङ्गु कनादिगु दु आथि थिथासे रिजर्भ ट्याङ्की देखेगु ज्या पाइपलाइन तब्याकिगु मेगु पूर्वाधार देखेगु ज्या नापा आप्ला याना चनागु आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय जानकारी बिगु ख नेपाली छुन्दी मनसुन तापाईगु जुगुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या प्रवक्ता भि विभूति पोखरेला नेपाले मनसुन सरदर जुन तेह्रसँग दुहा वैगु जुसाना अझन छुदी लिपा लागेको जानकारी ब्यादिल मौसमविद पोखरेला भू उपग्रहसँग वोगु तथ्याङ्क व गणितीय मौसम पूर्वानुमान या विश्लेषण या लिदांश नेपाले मनसुन सुरुजुइता छुदी लिपा लागेको सम्भावना क्याङ्गु जानकारी ब्यादिल ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवार विप्रेषण दिवस IDFR हलिन्याङ्क तिथि ज्याचुयाना हनासँग दु मङ्का कथा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा मान्यता लल हागुथो दिवस दपतिक जुन स्वर सहनी हलिया निगु करोडसिबे उप आपरवासी श्रमिक तेसा थगु छेच व समुदाय जीवनस्तर थकाता योगदान कथा हना ब्युसे दिवस हना वया चङ्गुदु थुगुसी दिवस लसता IDFR विप्रेषण या त मुक पारिवारिक खर्च धानियाईको माध्यम या कथन जक मकासे ग्रामीण उद्यमशीलता लजका बोलङ्कीको व स्थानीय आर्थिक हिउपा या महत्त्व जागो स्रोत या कथ छेलेता इनाप यागुदु संयुक्त राष्ट्रसँग कथ आपरवासी श्रमिक तेस छोइगु विप्रेषण स हलिन्याङ्क अथे चेगु करोड छेजया त दुज छेजया दुज तेत लब बिया चङ्गुदु जिल्ला प्रशासन कार्यालय यहाँसँग जिल्ला या सरकारी निकाय सञ्जायना चोपी कर्मचारी त दुथ्यागु सङ्घ सङ्गठन या कार्यालय त सरकारी भवन चिकेता उजाउ बिगुदु कार्यालय या प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेल उज्यागु कार्यालय त हेनु दिने चिकेता उजाउ बिगु जानकारी ब्यादिल प्रशासन कार्यालय संस्था दर्ता एन 2034 कथा दर्ता जुगु छुन सङ्घ संस्था उज्यागु कथा या कार्यालय त हेनु दिने चिका मेगु निजी वा भाडाके कयातको भवन त मेगु थ्या येङके त थो जानकारी कार्यालय त बिगु ख आदेश पिनिया बुख अमेरिका नापा शान्ति सम्झौता लेब्लान नापा फुक्क मोर्चा युद्ध नङ्किगु नङ्के मागु इरान धागुदु इरानिया विदेश मन्त्री अब्बास अराक्ची मध्य पूर्व अतिथि मोर्चा नेनासँगु सङ्घर्ष मनहङ्कु तले समझदारी पूर्ण कथ मानिया मफैगु धया दिगुदु सरकारी टेलिभिजन विदेशी कुटनीतिक नापा ब्रिफिङ अराक्ची लेब्लान नापा फुक्क मोर्चा लफु या त थथे व स्थायी कथन हङ्कुसा फुक्क सोया महत्व जाइगु शर्त कथ ज्याचो बालाइगो ध्या दिगु दुसा थो टिप्पणी या त तेह्रानो वासिङटन दथि फेब्रुअरी 28 मध्य पूर्व युद्ध नङ्केगो आज नापा समझदारी ज्ञापन पौ कथ घोषणा जुया वो गुख आ कासाया जानकारी फिफा विश्वकप फुटबल ठेन्डे बल्या थौ जुगु समूह आई कासा फ्रान्स सेनेगल या त बुकगु दु सेनेगल छगु गोलिया गु खसा फ्रान्स सँग गोलिया गु ख अथे समूह आया मेगु कासा नर्वे इराक या त बामलाको बुकगु दु इराक छगु गोलिया गुले नर्वे पेङ गोल याना बुका बिगु ख अथेना समूह जे या अर्जेन्टिना अल्जेरिया या त बुकगु दुसा कासा लियोनेल मेसी ह्याट्रिक याना ह्याट्रिक याना दिगु ख वेकलान झिन्हेगु खुइगु व ने खुगु मिनेटे ह्याट्रिक याना दिगु ख आ मौसम या जानकारी थौ कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमालय पहाडी लागाया मोहथासे व लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमालय पहाडी लागाया चगुनीगु थासे मलनापन हाप्सा तोयार वा वैगु सम्भावना कुबिगु धागु दुसा अन छुन थासे चपुनापा कुहा वैगु धागु दु कोशी प्रदेश या तराई या मोहथासे व मधेस प्रदेश या चगुनीगु थासे मलनापन हाप्सा तोय वा वैगु न सम्भावना कुबिगु धागु दु अथेना लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागाया छुन से क्वाइगु फे वुइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु पी वङ्गु नि पे खौले ये सुनि गदुने सुइगु फुटिङ यागु डिग्री सेल्सियस तति क्वाज लुइ कगु खसा थौन हिने ये सुनि गया क्वाज नि गुगु निसे सुइ छगु डिग्री सेल्सियस तति चनिगु दुकुमा दु थौ सुथे ये सुनि गले या त इजु या निगु मिनेटे लुइ आगु सूर्य शनि लन हेता इजु या च्यागु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिस शुभ
1: के तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएर पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ?
2: त्यसो हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्र रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्र MRC आफूलाई लागेका जिज्ञासा समाधान गर्न नबिर्सनु होला। साथै सबै पालिकामा हुने रोजगार संयोजकबाट पनि जानकारी लिन सकिन्छ।
1: वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय।
3: सार्वजनिक सेवामा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग, सीमान्तकृत समूहलाई प्राथमिकता दिउँ।
4: यस्ता समुदायको पहुँच विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धिमा सबैले सहयोग पुर्याउँ।
3: भ्रष्टाचारले यी समुदायलाई पार्ने प्रभावहरूको पहिचान गर्दै सचेतना अभिवृद्धि गरौँ।
4: नेपालमा सुशासनको पहल, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य।
5: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
6: नागरिक लगानी कोष।

सु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सान गिरी ढाङनी दा ढेनमुला घा इन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङरी सांसद कदेशे गुडास्तर च्याबा मिन्डी भारत से नेपाली चिया किनबारी समस्या तेबासे लामा युल्डी चिया उद्योग बन्द तामा तावारी खाम्बा समस्याला ताम थान्छ्युबान समस्या दा योनान थुम्ना लातोला बिसी सुङबा मुला सांसद कदेशे सरकार से दिम्सा आरेबा सुकुम्बासी कदेदा आङो से नान बस्ती ग्याम तेबा थेन थेनी कादे चिबा होल्डिङ सेन्टर हेन्से स्यान्दो चिबान खाबा घ्लारी फोख्रेन चितोबा जाजा कोला कादे लोपखाङ निबारी आयाङबा समस्या लेबान निबासे चुदा सरकार से यो नान गोतोला बिसी सुङबा मुबा सांसद कादे से बार्खा तिबारी माइबा धुइरी मिनी कादे री विपद से लोङना लाबा मुला बिबान यो नान समस्या दा घोसी गे लातोला बिसी सुङबा मुबा प्रतिनिधि सभाला तिनी चिसाङरिन प्रतिपक्षी दलला सांसद कादेशे काइब्लोन बालेन्द्र साहसे मुर्ला ताम्री सुङबा ताम संसदला रेकर्ड ग्याम तेबारी सुङबा मुबा चिसाङरी प्रतिपक्षी दलला सांसद कादे हर्क राज राई गोपाल शर्मा चन्द्रमोहन यादव कृपा राम राणा श्याम स्यान्दो सांसद कादेशेनोन युल्ला मुर्ला ताम्री काइब्लोन से पाङबा ताम सच्याई दिबारी प्रतिपक्ष से पाङसाइनोन सुङबोन से रुलिङ आलाबाथेन सरकार से पाङबा ताम असच्याई दिबा दुङा ला ताम हिनला बिसी सुङबा मुबा सूचना थेन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे सरकार मिनिला राङबाङ थेन पूर्ण प्रेस राङबाङला पछ्यरी मुला बिसी सुङबा मुला विनियोजन विधेयक थोला काठुरी सांसद कादेशे न्युबा ताम्री जवाफ फिन्चिवान संचार ब्लोन डाक्टर तिमिल सिनासे प्रेस राङबाङ दा नाङबा खाजुबाई नोन गेदा सरकार से च्यासी चिबारी आखाम बिसी सुङबा मुला चुराङ लासिन काठुरी सांसद कादेशे न्युबा ताम्री ब्योन ज्ञात थेन गे ब्लोन रामजी यादव से गोर्सोम तहला सरकारला रोरी राङलान युल्डी गे याङबारी खाम्बा सोबारी सरकार से गे लाबान मुला बिसी सुङबा मुला उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी यादव से विनियोजन विधेयक थोला काठुरी थोनबा ताम्री लेङमो थान्छिबान पेट्रोल छिकु ला सोमदा छोना लासी थानबारी खाम्बा लासी गे लाबान मुला बिसी सुङबा मुला सनम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से ब्लोन खाङला फेबा बजेट कादेरी रासायनिक सार आपूर्ति सनम बिमा उत्सुप सनम बोन कादेदा पिनबा अनुदान कम्पोस्ट सार सोबा राङबा ताम्दा बङ पिनबा लासी बजेट फेबा मुला बिसी सुङबा मुबा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविसे ब्रिबा डोबा बिदा किन्सी बिदा जिन्बा लिछा नोन विश्वविद्यालयला सेवारी आखाबा प्राध्यापक थेन कर्मचारी दा चुइङारा नाङरी सम्पर्करी खाबारी पाङबा मुला त्रिविबिला ब्रिबा डोबा बिदा सुव्यवस्थापन सेङ्बा समिति से तिनीन सार्वजनिक सूचना छिपन ब्रिबा डोबा बिदा जिन्बा लिचा विश्वविद्यालयला ठिम अनुसार सेवारी आखाबा थिएन तोक लाबा धुई जिन्ना आलाना सेवा ख्लाबा मास्टर कर्मचारी दा समितिला गेजाङरी सम्पर्क लाबारी मोइजेन लाबा हिला सूचनारी तोक लाबा धुई नाङरी सम्पर्करी आखासम विश्वविद्यालय थिएन लाबा कबुलियत नामा अनुसार कारवाही लाबारी तिबा बिसी पाङबा मुला सूचना थिएन संचार ब्लोन खाङसे सार्वजनिक सेवा प्रसारण गेन्दुन नेपाल टेलिभिजन से लोलो लोलो दुईरी ग्लुबा उपकरण थिएन प्रविधि प्रक्रियाला च्याबा गोबारी ब्ली सदस्य समिति सोबा मुला ब्लोन खाङला अनुसार 2083 असार घिक्ला कुनु ब्लोन स्तरीय निर्णय ग्याम डाक्टर सुदीप भट्टराईला थुतबोन्डी ब्ली सदस्य च्याबा साइबा समिति सोबा हिला समितिदा नेपाल टेलिभिजन से ग्लुबा उपकरण कादे सफ्टवेयर थिएन डिजिटल प्रणाली थेन थुइबा उजुरी प्रतिवेदन थेन सार्वजनिक सरोकारला विषय कादे च्यासी घोषी निचुई गिक रा नाङरी सुझाव छ्याम प्रतिवेदन ब्लोन खाङरी पिनबारी पाङबा मुला नेपाल टेलिभिजन डी तिलाइदिङ हेन्से प्रविधि थिएन प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरण लाबारी ग्लुबा से कादेरी पारदर्शिता आताबा ताम कादे थोनबान खाबा मुला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। प्रतिनिधि सभाकै आजुक बैठकमा सांसद सब गुणस्तर परीक्षणके नाममे भारत नेपाली चाय निर्यातमे समस्या सिर्जनाके नै कारण देशमे चाय उद्योग बन्द भेलासँ उत्पन्न समस्याके सन्दर्भमे जानकारी गराबैत तत्काल समस्या समाधान करबाक लेल माग कयलनि। सांसद सब नेपाल चिया उद्योग बन्द भेलासँ चायके कृषक श्रमिक आ उद्योगी सब मारमे पड़ि रहल विषयमे गम्भीर बनबाक चाही आ तत्काल G2G प्रक्रिया मार्फत समस्या समाधान कयल जेबाक चाही बतौलनि। सांसद सब सरकार वास्तविक सुकुम्बासीके पहचान नहि कऽ बस्तीसँ हटौने आ हुनका सबके अखन रहि रहल होल्डिंग सेन्टरसँ रहि रहल सब स्थानमे भूखे रहके तथा धियापुताके विद्यालय नहि जाके समस्या आयल कहैत तत्काल समस्या समाधान करबाक लेल माग कयलनि। सांसद सब देशमे विभिन्न अस्पताल सबसँ कैंसर रोगके रोगी सबके दवाई प्राप्त करऽ नहि सकि रहल विषयमे शिकायत आबि रहलासँ समयमे दवाईके व्यवस्थापन करबाक लेल आ दवाई सम्बन्धी समस्या नहि दोहरा देबा लेल माग कयलनि। सांसद सब वर्षा शुरू होबय लागल समयमे आम व्यक्तिके विपदके त्रास शुरू भेल कहैत विपद जोखिम न्यूनीकरणके लेल भऽ रहल प्रयासके सम्बन्धमे जवाब माग कयलनि। सांसद सब बाली बीमा प्रभावकारी नहि भेलासँ किसानके समस्या भऽ रहल कहैत किसान मैत्री बाली बीमाके व्यवस्था करबाक चाही, समयमे खादके प्रभावकारी व्यवस्थापन आ पर्याप्त हेबासँ कोटा प्रणालीके व्यवस्था करबाक माग कयलनि। अहि बीच प्रतिनिधि सभाके आजुक बैठकमे प्रतिपक्षी दलके सांसद सब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह देने सीमा सम्बन्धी विषयके अभिव्यक्तिके ठीक करा आ संसदके रेकर्डसँ हटेबा लेल माग कयलनि। बैठकके शुरूएमे उठि कऽ विरोध करैत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाल भारतके सीमा नाका विषयमे देने अभिव्यक्तिके ठीक करबाक लेल माग कयलनि। बैठकमे प्रतिपक्षी दलके सांसद सब हरकराज राय, गोपाल शर्मा, चन्द्रमोहन यादव, कृपाराम राणा लगायत देशके सीमानाके सन्दर्भमे प्रधानमन्त्री देने अभिव्यक्तिके ठीक करबाक लेल प्रतिपक्षी माग कयने बावजूदो सभामुख रूलिंग नहि करब आ सरकार अभिव्यक्तिके ठीक नहि करब दुखद भेल बतौलनि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सरकार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता तथा नागरिकके सूचना के हक के संरक्षण प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट करत आम संचार क्षेत्र के थप मर्यादित जवाबदेही आ विश्वसनीय बनाब आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधार के प्राथमिकता में रखने बतौलनि। विनियोजन विधेयक 2083 अंतर्गत सूचना तथा संचार मंत्रालय संग संबंधित शीर्षक ऊपर के विचार विमर्श में सांसद सब उठौने जिज्ञासा के आई प्रतिनिधि सभा में जवाब दैत संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा आवय वाला आर्थिक वर्ष 2083-84 के लेल मंत्रालय के नीति कार्यक्रम आ बजट आम संचार दूरसंचार हुलाक सेवा चलचित्र तथा मुद्रण के 5 प्रमुख क्षेत्र में केंद्रित रहल जानकारी दिलनि। आवय वाला आर्थिक वर्षक लेल संचार मंत्रालय आ माथात के निकाय के लेल 5,93,60,00,000 बरोबरीक बजट विनियोजन कयल गेल अछि। ई बजट मध्य 88% अनिवार्य दायित्व अर्थात चालू खर्च दिस आ 12% पूंजीगत खर्च दिस विनियोजन कयल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मंत्री निशा मेहता दवाई के सहज आपूर्ति आ मोल के समायोजन स्वचालित प्रणाली निर्माण कर एक हफ्ता भीतर प्रक्रिया आगू बढ़ाल जेबाक बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के विनियोजन विधेयक ऊपर के विचार विमर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री मेहता दवाई के समस्या के दीर्घकालीन रूप में समाधान करवासन काज आगू बढ़ लागल बतौलनि। मंत्री मेहता अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारण कयल गेल दवाई सबके बीतल एक दशक सँ मोल समायोजन नहीं भेल आ विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला में आल अवरोध के कारण बाजार में दवाई अभाव देखल गेल विषय में मंत्रालय गंभीर रहल बतौलनि। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के जिम्मेवारी स्थानीय तह के जिम्मेवारी रहल तथा आधारभूत अस्पताल में विशेषज्ञ सेवा अखन संभव नहीं भेल कहैत मंत्री मेहता आधारभूत सेवा पूर्ण रूप में प्रवाह कलाक बाद मात्र अन्य सेवा क्रमशः विस्तार करत जाब बतौलनि। मंत्री मेहता स्वास्थ्य बीमा के उच्च प्राथमिकता में रह कर बजट विनियोजन कयल गेल स्वास्थ्य बीमा के समग्र व्यवस्थापन का टिकाऊ कसन समस्या समाधानक लेल तत्कालीन आ दीर्घकालीन सुधार के उपाय सब आनल गेल बतौलनि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी भारत दिस चाय निर्यात में देखल गेल समस्या समाधानक लेल सरकार के गंभीर पूर्वक पहल कर रहल बतौलनि अछि। आय मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक ऊपर के विचार विमर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत ओ ई बात बतौलनि अछि। मंत्री चौधरी चाह निर्यात के समस्या समाधानक लेल प्राविधिक तथा कूटनीतिक पहल भऽ रहल आय के सकारात्मक दिस आगू बढ़ल।

विश्वासमे आधारित रहल चर्च करैत नेपाल बंगलादेश संगे संबंध के उच्च महत्व दैत आयल बतौलनि। सभामुख अर्याल बंगलादेश के जनता से प्राप्त जनादेश के आधार पर गठित सरकार प्रति शुभकामना व्यक्त करैत जनता के सेवा तथा देश के प्रगति आ समृद्धि के लिए सफल कार्यकाल के कामना सेहो कयलनि। नेपालक लेल निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भऽ नया सरकार गठन भऽ चुकल प्रसंग चर्च करैत ओ दुनू देश के सरकार बीच के सहकार्य थप सुदृढ़ भऽ द्विपक्षीय सम्बन्ध के विविध आयाम सँ नया ऊंचाई हासिल करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। सभामुख आर्याल बंगलादेश हासिल केने आर्थिक तथा भौतिक विकास के प्रशंसा करैत नेपाल के विकास यात्रा में बंगलादेश के नीक अभ्यास उपयोगी भऽ सकबाक धारणा रखलनि। खेलकूद क्षेत्र में बढ़ रहल सहकार्य से सेहो दू देश के जनता बीच के संबंध के थप नजदीक अन्य चर्च करैत सभामुख आर्याल फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल लगायत खेल मार्फत युवा पुस्ता बीच मित्रता संपर्क आपसी समझदारी और वृद्धि भेल बतौलनि। हुनका सबके बीच शिक्षा स्वास्थ्य कृषि जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्रीय सहकारी के विविध विषय में विचार विमर्श भेल सभामुख के सचिवालय जनौलक अछि। राजदूत रहमान ऊर्जा व्यापार पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य तथा जनस्तरीय संबंध के क्षेत्र में नेपाल और बंगलादेश बीच विद्यमान सहकारी के थप विस्तार करबाक लेल बंगलादेश सरकार सकारात्मक रहल बतौलनि। ओ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग के प्रभावकारी बनबैत सझिया हित के विषय में मिल कर काज करबाक चाही पर जोर दैत सभामुख के सचिवालय जारी केने प्रेस नोट में उल्लेख कयल गेल अछि। सूचना तथा संचार मंत्रालय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलीविजन विभिन्न समय में केने उपकरण तथा प्रविधि खरीद प्रक्रिया के अध्ययन एवं छानबीन करबाक लेल 4 सदस्य समिति गठन कयलक अछि। मंत्रालय के हिसाबे 2083 अखाड़ 1 गते मंत्रिस्तरीय निर्णय से डॉक्टर सुदीप भट्टराय के संयोजकत्व में 4 सदस्य छानबीन समिति गठन कयलक अछि। समिति के नेपाल टेलीविजन खरीद केने विभिन्न उपकरण सॉफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणाली संग संबंधित उजूरी प्रतिवेदन आ सार्वजनिक सरकार के विषय सबके तथ्यपूर्ण अध्ययन क 21 दिन भीतर सुझाव सहित के प्रतिवेदन मंत्रालय में पेश करक लेल कहने छ। छानबीन समिति नेपाल टेलीविजन द्वारा खरीद कयल गेल ग्राफिक सिस्टम न्यू मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑडियो वीडियो उपकरण डिजिटल ट्रांसमीटर तथा इठहरी चैनल के लेल खरीद कयल गेल प्ले आउट ऑटोमेशन सिस्टम संबंध में विस्तृत अध्ययन करबाक कार्यदेश देलक अछि। एहि विषय में विभिन्न निकाय में शिकायत तथा उजूरी रहल अछि। एहन उजूरी तथा शिकायत के संदर्भ में मंत्रालय अपन आंतरिक जानकारी प्रायोजन के लेल छानबीन समिति गठन कयलक अछि। नेपाल टेलीविजन में बीतल किछ वर्ष एम्हर प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरण के लेल भेल विभिन्न खरीद प्रक्रिया के संदर्भ में पारदर्शिता तथा कानून प्रक्रिया के पालना संबंधी प्रशंसा उठित आयल अछि। एहि से पहिने मंत्रालय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था के सैटेलाइट खरीद प्रकरण के संबंध में सेहो छानबीन समिति गठन कयने छल। मध्य प्रदेश के रोहतक जिला में गत आर्थिक वर्ष के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष में सड़क दुर्घटना सहित जनधन के क्षति कम भेल अछि। रोहतक प्रहरी के हिसाबे आर्थिक वर्ष 2080-81 में सड़क दुर्घटना में 65 गोटा के मृत्यु भेल में चालू आर्थिक वर्ष के अखन धरि 48 गोटा के मृत्यु भेल अछि। सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण तथा रोकथाम के लेल जनचेतना जगेबाक उद्देश्य से आई आयोजित ट्रैफिक सप्ताह कार्यक्रम के संबोधन करैत रोहतक के प्रमुख जिलाधिकारी दिनेश सागर भूषाल नियमित तथा छटके जांच सहित सड़क के सुरक्षा व्यवस्था कड़ाई कयल गेला से सवारी व्यवस्थापन में सुधार आयल बतौलनि अछि। आब मौसम समाचार। अखन नेपाल में ऊपरका वायुमंडल में रहल पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायु के सेहो आंशिक प्रभाव रहल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के हिसाबे आई कोसी बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय आ पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान तथा लुम्बिनी कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के हिमालय आ पहाड़ी भूभाग के 1-2 स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित मध्यम वर्षा के तथा हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। कोसी प्रदेश के तराई के किछ स्थान तथा मध्य प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघगर्जन आ ठनका सहित मध्यम वर्षा के संभावना अछि। लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के किछ स्थान में गर्मी हेबाक संभावना रहल अछि। अहिना आई राति देश के हिमालय आ पहाड़ी भूभाग संगे कोसी प्रदेश के तराई भूभाग में साधारणतः बादल तथा तराई भूभाग में मौसम मुख्यतः सफा रहत से महाशाखा जनौलक अछि। आब खेल समाचार। लियोनेल मेसी विश्व फुटबॉल में दोसर ऐतिहासिक उपलब्धि थपैत अपन 6ठम विश्वकप सहभागिता के अविस्मरणीय बनौने छथि। कप्तान मेसी के हैट्रिक प्रेरित प्रदर्शन में साबिक विजेता अर्जेंटीना विश्वकप उपाधि रक्षा अभियान विजयी शुरुआत कला से ओ विश्वकप इतिहास के संयुक्त सर्वाधिक गोल कर्ता सेहो बनल छथि। कंसास सिटी स्थित 69,045 दर्शक क्षमता भेल एरोहेड स्टेडियम में मंगल दिन भेल खेल में 38 वर्षीय मेसी 3 गोल करैत अपन विश्वकप गोल संख्या 16 पहुँचौने छथि। एहि संगे ओ जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस के सर्वाधिक 16 गोल के कीर्तिमान

के बराबरी कयने छथि। मेसी के लेल ई खेल दोसर कारण से सेहो विशेष रहल। ओ अपन करियर के 200वां अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलत। विश्व कप के 6 संस्करण में सहभागिता जनाब वाला पहिल फुटबॉल के इतिहास रचने छथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीपसिक पहिल कोष संकलन चरण में 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्यांकन प्राप्त कयने अछि। त ई विश्व एआई बाजार में अपन कंपनी के तीव्र उदय के थप बल देने छ। लगानीकर्ता किछु दिन पहिने ही संपन्न फंडिंग राउंड में कंपनी के ई मूल्यांकन देने छ। एहि संगे डीपसिक एआई क्षेत्र में तीव्र गति में उदयमान नया शक्ति के रूप में स्थापित भेल देखल गेल छ। कंपनी से पहिने सन 2025 में कम लागत में तैयार कयल गेल चैट बोट मार्फत विश्व के चकित कयने छल। आ ई अमेरिकी प्रतिस्पर्धी सब संग प्रतिस्पर्धी क्षमता देखौने छल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

नुक्ते पर सहमति बनी है वो समझौता अभी अंतिम नहीं है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका ईरान में निवेश नहीं कर रहा है। ये उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान के फाइनल सेटलमेंट के लिए राजी होने के बदले में ईरान के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड की इजाजत देने को तैयार था। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि डील के तहत ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मिलने वाले हैं। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की बैठक में विनियोजन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए विषयों पर संबंधित मंत्रियों की ओर से दिए गए जवाब। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में है, सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा का कथन। पहचाने गए भूमिहीन सुकुमवासियों को आषाढ़ के तीसरे सप्ताह से लाल पुर्जा वितरण शुरू करने की भूमि व्यवस्था मंत्री प्रतिभा रावल ने प्रतिनिधि सभा में दी